शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंत से पगत भले जन नानक जी जो पावे है मेरे हर भगवान।

सब दुख सबाया जमदर बदै मारिए परमै परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया।

वाहे गुरु। बोलो जी, बोलना जी। अरदास एक ओंकार, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै। गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास, रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जे डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौनी दावे, ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाही दी जोत, शब्द गुरु हाजरा हजूर, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। निमाणिया दे माण, निताणिया दे तान, न्यूटियां दी ओट, गुरु गरीब निवाज। धन धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, शब्द गुरु दाता आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है। सच्चे पातशाह जी, आप जी दे पाणे अंदर, हुक्म अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया। महाराज जी अमृत वेले तो आप जी ने तख्तां ते प्रकाशवान होके खुले दर्शन दीदार दे के संगतां नूं नदरी नदर निहाल कीता है। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल, सोहला साहिब जी दी बाणी दा नाल जाप कीता गया। सेवा करदियां बेअंत फुल्लां हो गईयां, आप जी बख्शण योग हो महाराज जी। बेअंत संगतां तिल फुल भेटावां लै के तुहाडे दरबार दीआं घर दीआं हाजरियां भर रहीआं ने। दाता जी तुसीं जाणी जाण हो, सब दीआं झोलियां खुशियां नाल भर के भेजियो। सब दे घरां दे लो लंगर तपदे रखियो, आपसी तालमेल बना के रखियो। सतगुरु जी दासरियां दे परिवारां नूं, बच्ची बच्चियां नूं, समूह संगतां दे परिवारां नूं, बच्ची बच्चियां नूं अपने लड़ ला के रखियो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुक्ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। सब दे बच्ची बच्चियां नूं माता पिता जी दे आज्ञाकार बनाए महाराज जी। विद्या दियां दान बुलंदियां छू सकन, ऐसियां बख्शिशां अपने दर घर तों बना के भेजना महाराज जी। सब संगतां दी हाजरी परवान, दीवाना दी संपूर्णता सेवादार हाजर ने। रैण आई है सुखमई शांतमई बतीत करायो। ऐस वेले आग्या बख्शिश करो, निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो जी। अमृत वेले फिर दर्शन बख्शियो, सुख होवे नाम चेतावे नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रभ का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजी, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजी। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते आनंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबो हुना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार सुख, प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जान सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलूक। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महापयान दूत जम दल, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुर मुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जेह मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याईऐ, नानक गुर मुख परम गत पाईऐ। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही। अनक बिघन जय आये संगारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जनमै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइए साधकै संग। जिह मार्ग के गने जाहि न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जह पंथ तेरा कूना सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महापयान तापत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ अकरखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जान कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बिबेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम।
ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰਕੀਕਤ।

ਲਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਐ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਐ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੂਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀ ਵੈ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈ ਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਘਟਾਵੈ ਤਉ ਭੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਤਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਪੂਜੈ ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਊਪ ਪਿਆਲ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੂਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਨਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੋਮੈ ਸ਼ੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਜੀਨਾ ਮਨ ਆਪੋ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰ ਤਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਬਿਵਿਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਜੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ
छूट जाए तिसका श्रम करै, संग सुहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर तब प्रीत भस्म संग होए, अंध कूप में पतत बिकराल, नानक काट लिहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात, बाहर पेख अंतर मल माया, शपश नाहे काश करै छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इस नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे तरह अथा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जान सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गै लिहु ऊड़ निभावे, कहा बुझारत बुझै डूरा, निस कहिए तौ समझे पूरा, कहा बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तौ पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहां उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सो आवे न चीत, जो बै राई तास्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मन मन प्रतीत, काल ना आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार, महा लोभ त्रो याहू जुगत बिहाने, कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र तहारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी, तुमरी गात मेत तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, देन हार प्रभ छोड़ कै लाग है आन सो आए, नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए, अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै, एक भी ना दे दस भी हिर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजै सद नम सुकारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन वूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगनत साहु अपनी दे रास, खात पीत बरत आनंद उलास, अपनी अमान काश बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुरस का विश्वास न होवे, जिसकी वस्त तिस आगे रखे, प्रभ की आज्ञा मन माथे, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक पांत माया पिहेत, सर प्रहुवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिन सह ओ मन पशुतावै, जो दिसै सो चलन हार, लपट रहे उतै अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावै नेह, ताको हाथ न आवै केहे, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तान तन कुटंब सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल, मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या ध्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साधकी सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रवण पार निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहिरै, मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पार लोभ लुभावै है, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन की नरारथ दाम, धन धन ते जन जिह कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर काश अवर कुमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्म मरै, जिसका अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक ऊन जान चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै, आपे आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब काछ जानै आत्म की रहत,
ਜਿਸ ਭਾਵ ਐ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰ ਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜਿਉਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਤਰਗੈ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਟਾਕੇ ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਾਗਤ ਕਰੇ ਹੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਬਹੂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਧਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤੇ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਇਹਾਂ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੂਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਉ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸ ਹੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ ਰਾਚ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਆਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੂਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋ ਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਕਤ ਹੂੰ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਸ ਥੇਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋਂ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ
साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निसतारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सरब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं काश काल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध कै संग गुलुकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहिला, साध संग बिशुरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा बेद न जान, जेता सुनै तेता बख्याना है, साध की उपमा कहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, आवर न पेखै एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपति, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, ज्यों बसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ बाल बाल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्यन जय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, और तार है जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नम सुकार, नानक ओ अपरस सगल ने सतार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस, परत्रे रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद बिख्या पर हर, मन की बासना मन ते तर, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिस्न की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवे निह कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्मै सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सुखम मैं जाने असथूल, चौह वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौह वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोय, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगद पाथर को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहु जुगत पितना पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाऊ, अपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसरियो आप होय आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तत कर है अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थ वासी, कई कोट बन भ्रम उदासी, कई कोट वेद के सरुते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार, कई कोट कब का विचार, कई कोट नावतन नाम त्या वह, नानक करते का अंत न पावह, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेगो आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्व को हिरह, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र,
ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸ ਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚੈਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖੈ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪ ਤਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇ ਨ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਸਦਾ ਧਾਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਆਪੋ ਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾ ਸਾ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣ ਜਲ ਸਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖਿਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵਰ ਨ ਆਵੈ ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦੇ ਸਤਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ ਕਬਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ਕਬਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਉਭ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਬੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰ ਮੈਂ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
ਕਬ ਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵ ਵਹਿ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਨ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰ ਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾਸ਼ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸ ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਪੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਾਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਧਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰ ਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪ ਸਕਾਓ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕਿਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ਼ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੁਟੈ ਸਾਹਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾ ਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੂਰਾ ਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਸਪੇ ਹਾਸ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕੇ ਸ਼ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਵੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਗਿਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ ਆਪੁਨੇ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲਾ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਣ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਕਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਈ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਪਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤਿਰਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਂ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਥਾਂ ਓਏ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ
संत का निंदक महा आतताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होय मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते तरह, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत पीलो था, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ आए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यो पावक ईधन त्रपै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस पावै सोई खया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिलाए सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मर ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न त्रष्टै कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पाया किरत न मेटै कोए, नानक जाने सचा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तुत करो दिन रात, तिस त्यावो सास गिरास, सब कुछ वरता तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बटपागी नानक जन से, सलोक तज हो सियानप सुरजनौ, सिमरौ हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक ब्रथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागै आए, मार रख है एक आप, मानुख कह किशना ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत ब्योहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, ननहु पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करहे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछान है, ए तो तकियो सो जी जान है, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन है निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख, जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूजिया, जब देखाओ तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरे, आपन चले तो आप ही करे, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुगत राच्य थाप उथाप,
अभिनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सुशोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेलय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करे बड़ भागै नाम जपत पावै बिसराम नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसाए हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणे हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उनहु बन आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जान एको जान सलोक सर्ब कला भार पूर प्रभ बिरथा जानन हार जग सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोय तिस बिन नाही तेरे किश काम गात नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घाट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ जन सब किश तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बहे दातार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जान सदा आरोग ज्यो मंदर को थामै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की बाशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बेल लाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो काश करे सोई सुख मान भूला काहे फिरया जान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे रास लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात से ती घर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद के बसंत संग चाल अवर त्याग बिखिया जान जाल धन धन कहे सब कोय मुख उजल हर दर कह सोए ए वपार विरला वपार है नानक ता कहे सद बलहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो सुनान साधु उपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै कोट गही संत दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया मृतक को जी वालन हार भूखे को देवता आधार सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लेखे का लहना पाहे सब किश तिस का ओ करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करने कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिय तेह लोए जाके हृदय एक होए सच करणी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृष्ट सचा आकार सच वरत सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केशो त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस हो वैसो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानुक की तू प्रीत त्याग तिसके परे नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मान एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र होर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान तिहान जिन दे जानदास नाम त्यावै से
तेहो गुण में जाकू परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए कूच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना भेद कीनो बिस्थार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे पूरण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब पवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणे निर्मल निर्मले जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझै जे कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिस की श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत बीचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुरु कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख कटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सुवट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुग आद सच हाय पी सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन सिन मूल पछाण्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ता कौ भिन न कहना जाई बूझे बूझन हर बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक ही राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तहरे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख है ताकि गत में तो कोई ना लख है प्रभ के सेवक कौ को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भस्म कर लस्कर कोट लख है जिसका सास न काटत आप ताको राखत देख रहात मानस जतन करत बहुपां तो तिसके करत ब्रथे जात मारे न रखे अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करहे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत एहो मन तन त्रपी है नाम रतन जिन गुरुमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्ट आया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करै भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने सिउ रहे सुमाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने
तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक ना जानो। आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। मन मेरे तिन कियो टले, मन तन अपना तिन जान दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। तिस की शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै। अवर सयान पसगली शाड, तिस जन की तो सेवा लाग। आवन जाना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो साध पैरा। सलोक सात पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ। तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपति सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुरु सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उच्चरै। सतगुरु सिख के बंधन कटै, गुरु का सिख विकार ते हटै। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी हे। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुरु सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जोर है, गुर की आज्ञा मन मैं सहै। आपस को कर कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै। मन बेचै सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्ज रास। सेवा करत होए नेह कामे, तिस काउ होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बिस बिस वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जान, जन मैं पार ब्रह्म। एक आप नहीं काश परम, सह स्यान पलै न जाइए। नानक ऐसा गुरबट पागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेट तसंग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करण आघने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखियोजा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए। जे बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक। काहू बोल ना पहु चत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निरबानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनेक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तापत माहे ठांड वरताई, आनंद पहया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे देसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भाओ चूका निरभाओ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल तहारी, अनक बार नानक बलहारी। सलोक सासना चालै बिन भजन, बिख्या सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उर तहारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हर वथ। एहो तन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस धन को चार कूंट उठता वै, सो धन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सोभा को करै भली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी। अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखत लाए। सर्ब निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह प्रवान। मन प्रभो दो हर कै नाए, दह जिस धावे ते आवै ठाए। ताको बिघन लागै कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। काल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ।
ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਬਿਨਾਸੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਨਕੋ ਪਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲ ਸਤੇ ਰਹਿ ਧਾਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰ

कहो किसे व्यापत। जब अपन आप हो आप पार ब्रह्म हो तब मुँह कहाँ किस होवत भरम। अपन खेल आप व्रतीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलित तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जानम मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त के सपूषत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप हो आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जह सर्व कला आपे प्रवीण तह वेद कतेब कहा को चीन। जब आपन आप उरता रहे तौ सगन आप सगन कहा बिचारै। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कही अचेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लगे चिंता। जह आपन आप आप पतियारा तह कौन कथ है कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण में कीनो बिसुथार। पाप पुन तह पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पह पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एक है। जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पसार संत प्रताप। दुहु पाख का आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन ना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथाह अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार। आपे एको आप विस्तार जात इस भावै तां सृष्ट उपाए। अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए। अपन सूत सब जगत परोए जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता। नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब तक है हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारै। सो मुआ जिस मनो बिसारै तिस तज अवर कहाँ को जाए। सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ। अंतर बाहर जानहु साथ गुण निधान बेअंत अपार। नानक दा सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल। सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप। अंतर जामी रहो ब्याप प्रत पालै जीअन बहु पांत। जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए। भगत करै हर के गुण गाए
मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जान लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवको सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर भय निरवैर, आन दिन पूजा है गुर के पैर। ए लोक सुखिए परलोक सोहिले, नानक हर प्रभ आपे मिले। साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावहु प्रभ परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करहु उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखू नेरा, मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हालत पालत दोए लिहु सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसाया तिस साच परिखिया। मान तन नाम जपो लेवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वापार करो वापारी, दर गए निभ है खेप तुम्हारी।

निर्भव जप सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोए न पहुचन हार सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाति दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगिरी एकस कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत धरन माहे आकाश पयाल सर्ब लोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कोंट दह दिसे समाहे तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मह देखो ससियर सूर नखयत्र मैं एको बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले

पोत गुर प्रसाद परम का नासो नानक तिन मैं एहो बिसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हिरदे सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की एहि रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे बिसथारो तिस भावे ता एकंकार अनक

अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखन हारा। सगल समगरी जा का तना, आपन जासो आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मध अलिप तो रह, जो किश कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां ले समाए। इस ते होए सुनाही बुरा, उरे कहो किने काश करा। आप भला कर तू तो आत्मी की, आपे जाने अपने जी की। आप साचो धारी सब साचो, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का है सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सलोक।

अष्टपदी। पूरे गुर का सुने उपदेशो, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरहु गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागौ तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहौ, साध संग अग्न सागर तरहौ, हर तन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित

दुख भंजन पूरण किरपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कह माथे, नानक उदरे तिन कह साथे। सारन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भये गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बेकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निब ही खेप हमारी। प्रभ के उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, परधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बाहुर न होवै आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसै परापत होए। खेम सांत रिद नवनित, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी।

नानक एह गुण नाम सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार सहस सियाण पा लख हो ता इक न चलै नाल किव सचियारा हुई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्सीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मे जे बुझे ता हम मैं कह न कोई।

निर्गुण गुण करे गुण मंतया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश।

तीर्थ तप दया दत दान जी को पावै तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाऊ अंतरगत तीर्थ मल नाऊ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न हुए। स्वस्थ आत बाणी बरमाऊ सत सुहाण सदा मन चाऊ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन। जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जी।

ना कोई, जा करता सिर ठीक और साजे। आपे जाने सोई, किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आख एक दू एक से।

आगाज कोड़ कोड़ कपाल थके वेद कहन कवात सहस अठारह कहन कतिबा असलू एक धात लिखा हुए था लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा याकी है आपे जाने आप साला ही साला ही ती सुरत न पाईया नदियां अतवाह पवह समुद न जानी है समुद सह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हुन विसर है अंत न सिफती कहन नांत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन नांत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकारु अंत न जापै पारावारु अंत कारण किते बिल लाहे।

राख न सके कुए जी को खाए के आखण पाए ओ जाने जितिया मुह खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के जिसनु बख्शे सिफ सालाहा नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण मुल वापार मुल वापारी मुल भंडार अमुल आवे मुल ले जाए मुल पाए मुल्ला सुमाए मुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमुलो मुला क्या न जाए आकाक रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करह वख्या आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव किते आखे आखण पाही किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे ताक न सकह के जीवड़ पावे तेवड़ होए ना।

सो घर के हाव जित वै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारे गावै तोनु पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛਪੈ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨੇ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਨ ਗਨੀ ਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿ, ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਵੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਝਾਂਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਵਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਯੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ
नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग परनासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदु उर्ध अर्धंग अगंग ऊग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अछिदी अपेदी अनामंग अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तामं तेराजो चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रया छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्तुं निरनाथे नमस्तुं परमाथे नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृष्यंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अकिजे अपिजे समस्तं प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चार पट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल कर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग पुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल छंत्व प्रसाद आद रूपन आद मूर्त जौन पुरख अपारु सर्व मान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जितर तितर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरेक आद पुरख उदार मूर्त जौन आद अशेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जितर तितर दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम हीन पेख ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदै मान ताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखिल खेल अनंत को फिरेक देव पेव न जानही जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पासु जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक माने पुरती लोक चौदह की विखय जग जापी जे जाप आदिवनाद मूर्था प्यु सबैजे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वरचियो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सुपरम रहत अभूत लख अभेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्व गंजन सर्व पंजन आद रूप असूतांग हीन अपंग नात्मिक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग रेख परम भेद प्राण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र ना वही वह चित मत पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा अनांगन पौ प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य कर्म सर्वा परनाढ्य अंडन वाढ्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे भुजंग प्रया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिशय अधिशय अदृशय कृशय भगवती छन्त्व प्रसाद कथते किया चिज दिशय किया भिज भिषय किया गंज कर्मय किया भंज परमय किया भिज लुकै किया दित सुकै के अवधूत वरण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आसुक वरण के सर्व अपरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मेरे हक है कि पाक बेऐब है कि गै भूल गैब है कि फूल गुना है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज्य है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमंग फहीम है कि अकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमीसुल सलाम है सलीकत मदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है विलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अपीद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप हैं अचिज हैं अछूत हैं कि नरकंग प्रणाश हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट

न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तत न मत न जात न पात है। निरसाकुं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दिहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं प्रनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रनास है बहसुल निवास है के सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल अलेख है हमेशुल अभेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मत पार छंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभवनाश मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश्विश अपांड जल थल महंत दिश्विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आ जन बाहु एक सुदाहु ओंकारात कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंच जगात आज जन बात अंच अंजगात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर हैं विश्वम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं कलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं थपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अमृता अमृत हैं करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत है अमृता अमृत हैं अजपा कृत है अमृता अमृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पावभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य।

स्वरूपे नमो परम तत्त्वंग तत्त्वंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजी अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल प्रणासी अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्कामं विभूते समस्त

प्रणासी सो धर्मं भिकुते सदा सचदानंद सत्रं प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय भिकुते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपुते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपुते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री भगवान की भाई कृपा उनते एक रत्ती बिन एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे इते भये तो कहा भये भूपत अंत को नांगे पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन।

साचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं तल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे। पुन पर तापन बाढ़ जाय तो धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजिंद्र निराधव जौ त्रिलोक को राज करेंगे। कोटिस नानक जातिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे। ब्रह्म हे सर्विशन सची पत अंत फसे जम पास भरेंगे। जे नर श्री पत के प्रस हैं पगते नर फिर न देह तरेंगे।

श्री भगवान कुभेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पात साई दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मोहे बचावू। सुखी बसै मोरू परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

कोई अवर न त्याऊं जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जुजू करे हो रक्षा।

बोले ना कीचै, जितंत पछुताइय। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। अगा

कहता वे कह सब तू है, जिन जग तू पाया। कह नानक तू सदा अगम है, तिरंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुद उपाय, वेक परसन आया। लभ लोभ अहंकार चुका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप टुटा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी। बिख मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा। बहुत नाही बोलना, खन्य हो तिखी वाल हो निकी। ये तो मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया। हर वा सुना सुमानी, कह नानक चाल भगता। जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाही तिव चला।

नाम लाहे से हर हर सदा ध्यावहे जिस नौ कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों भावै तिवै चलावहे एहो सुहेला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहों लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली किने न पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित हुए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित सो पवित संगत सुभाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विन सहजै सहसा न जाय नह जाय सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाय सहसै जीव मलीन है कित संयम धूता जाय मन धू शब्द लागू हर स्यों रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाय जी हो मैले बारहो निर्मल जी होता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा महना उत्तम सो सुने नाही फिर है जो बेतालिया कह नानक जिन सत तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सत समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख हुवै हुवै ता सनमुख सिख कोई जी हो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतरात्मै समाले आप छड़ सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख हुए जे को गुर ते बेमुख हुए बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थै कोई पुछो बबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए।

हृदय सुमानी विभु अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कह

का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊ, शब्द रतन जित मन लागा, इहो हुआ सुमाऊ। शब्द सेती मन मिलया, सच्चा लाया भाऊ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कह नान शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाऊ, शिव सकता पुपाए कह, करता आपे हुक्म रताए, हुक्म रताया वेखै गुरमुख सै बुझाए, थोड़े बंधन हुवै मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै, कस्यों लिवला।

जानी, गुरु बाजो तत्तै सार न जानी, तेहि गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए जिसनु मन दिन हर लिव लागे, जागत रहण विहानी, माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, वरदाता जी अगन में आहार पहुंचावे, उसनु कह कोई न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है, कह नानक वरदाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया गुण सभी को जे ही करतै खेल रचाया, जात सुपाणा ता जम्मिया परवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया, ए माया जित हर विसरै मूप जय पाउ दूजै दूजा लाया, ए माया जित हर विसरै मूप जय पाउ दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया, हरे आप मुल कहे मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसे विट हो रहे लोक बिल लाए, ऐसा सतगुरु जी मिले तिस नौ सिर सौपिए, विचो आप जाए जिस दा जीव तिस मिल रहे, हर वसै मन आए, हर आप मुल कहे भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए, रास मेरी मन बन जारा, रास मेरी मन बन जारा, सतगुरु ते रास जानी, हर हर नित जप्यो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कह नानक रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए, होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, बहुड़ न तृष्ण लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक हूर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जूत रखी, ता तू जग में आया, हर जूत रखी तुद विच, ता तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ, चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जूत रखी ता तू जग में आया, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल नि सखिए, सोग दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे, आपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभा मिलिया, करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया सुजग मैं आए कह, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मैं आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक यो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जो तरी, हर बिनवर न देखो कोई, हर बिनवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया, एहो विश्व संसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरे आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर बि, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर कह, हर बिन अवर न कोई, कह नानक नित्रंद से सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो सचै सुनना नो पठाई, सचै सुनना नो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मंथन हरिया हुआ, रसना रस मानी, सचल कबिडानी, ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सचै सुनै नो पटाए, हार जियो गुफांदर रख कै, वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी इक न दसवां द्वार दिखाया, तहन एक रूप नव नवनिध सिद्धांत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुपांद रखै, वाजा पवन वजाया, यो साचा सोहिला साचै, कर गाव हो गाव ता सोहिला घर साचै, जिथै सदा सच त्यावहे, सचो त्यावहे जात दुभावे, गुरमुख जिना बुझावहे, यो सत्सभना का खसम है, जिस बक्से सो जन पावहे, कह नानक सच सोहेला सचै घर गावहे, अनद सुनहु

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

पुत्र पठानी अमल किया चारे वे सचियार पड़े पड़े तीन चार विचार पाव भगत करनी सदाई तो नानक मोह कर पाए।

0: नानक की बारी उठ जी नाही जाए सो करे जित सर
1: कोटान कोट धनवाद है धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिन्होंने अपार रहमत बख्शिश तरस किया है अमृत वेले की रात चोली च पाई है वडभागे हाँ सतगुरु जी कृपा करन नदर इनायत बख्शिश कर देन हर रोज नेता प्रति मालक दे चरणा दा प्यार मालक दी गोद मिलदी रहे जिदे करके ए मिलिया होया मनुखा जावा साडा सफला हो सके सो हुण आप जी दे सन्मुख आप जी नूं गुरमत विचारां राही निहाल कर रहे हन पंत दे महान विद्वान गुणी जन अति सत्कार योग मान योग ज्ञानी सकत्तर सिंह जी ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

मनी उपजियो सगले दुख पलायन रसना गुण गोपाल निध गायन शांत सहज रहस मनी उपजियो सगले दुख पलायन रहाओ। जो मांग है सोई सोई पावे,

अन रस मह भोलाया बिन नामै दुख पाई सत गुर पुरख न भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाए। ए मन मेरे बावले हर रस चख

सब जग बाधिया, हवरी का नहीं हुक्म पया। गगै गोए गाए जिन छोटी, गली गोबिंद गर्भ पया।

तह मूड़े लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चित वया। काया भीतर अवरो

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दिखी मां गुरु बख्शिश करे रहमत करे, तुहाडे साडे ते सभना ते चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

0: अमरीश तरन तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सोहेले राख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले परम सकार जी सात संघ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन सकार योग्ञानी मनमोहन सिंह जी जिन्होंने आप जी ने राग दरबार अंदर बड़ा रस पेना कीर्तन सरवण करवाया है, उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। हूँ आप जी ने अगला जथा आके कीर्तन द्वारा निहाल करेगा जी सकार योग्ञानी हरभजन सिंह जी लहरी जी उन्होंने जथा उन्होंने शब्द गायन करने जी। पहला शब्द है श्री राग का तत्ती राग ने, सो उन्होंने तीन राग उन्होंने अज सरवण करवाने। श्री राग का शब्द है जी हर बिन जियो जल बल जाओ। ते अगे है जी दूसरा राग तुखारी राग चेत बसंत भला। उस तो अगला है जी शब्द बसंत राग का ए मन हरिया सहज सफाए। तो आओ उन्होंने पासों आप राग दरबार अंदर इस तीन शब्द लाहेबाने तिना रागा सरगुण करिए वक्र वक्र च। समा ठीक 8 बजे तक उन्होंने 8 बजे तो बाद भाई साहब अंकार सिंह जी तो 8:30 की समाप्ति होनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: हूं मैं बेनती करता हाँ भाई नरेंद्र सिंह जी ये जो शुक्रवार तो शुरू होकर 31 राग दरबार निर्धारित रागों से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिवस में समर्पित हर साल की तरह हो रहा है। ये अज दो रागों में कीर्तन करेंगे राग बिलावल राग भाई साहब का समा है 12:40 बजे तक आओ प्यार ना।

बेनती कर दें आप जी दे चरणा च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देखते धनी हन, सरबंस दानी हन, खालसा पंथ के सृजनहार हन, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवें जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग एडा वड्डा खजाना। उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू हुई सी और इन्हों 2 साल लगे सन लुधियाने विच, दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नु संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया, उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ये उही क्रांति ते सी, सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद।